रूप दे रानी इज द टाइटल ऑफ दिस सॉन्ग. पति पत्नी और वो दो इज द नेम ऑफ द मूवी. एंड दिस इज वर्ड गेम वेयर आई गिव यू अ कपल ऑफ क्लूज एंड यू गॉट टू फिगर आउट द वर्ड. एंड टुडे द डेफिनेशन फॉर द मिस्ट्री वर्ड इज एन एक्सेस. एंड लेट मी जस्ट स्पेल इट आउट फॉर यू सो यू डोंट थिंक इट्स एक्सेस. एंड एक्सेस as in E-X-C-E-S-S. That's the definition. 11-letter word, 4th letter E, 5th letter R. Find me a word that's 11 letters long, the 4th letter is E, 5th letter R, and it has to match this definition, an excess. Send guesses now, 071-613-7803.

0: जी हाँ दोस्तों, उन नेक विचारों के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आप शायद जानते होंगे कि वो आवाजें हैं लता मंगेशकर जी की और पंडित भीमसेन जोशी जी की। आप गीतांजलि सुन रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम आपको बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं।
1: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
2: You are listening to Geetanjali. You are listening to Geetanjali. Lotus FM.
0: बिल्कुल दोस्तों, आप वीना के साथ हैं। तो चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही नेक विचार के साथ। एज वी ऑलवेज डू, वी शेयर अ वेरी स्पेशल थॉट विद यू इन द हिंदी लैंग्वेज एंड वी गिव यू इट्स ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश एंड द इंटेंशन इज फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न सम हिंदी। और आज के खास कलाकार हैं शान मुखर्जी। यू पर्हैप्स नो दैट ही सेलिब्रेट्स हिज नेक्स्ट बर्थडे ऑन द 30th of September। और प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बार फिर से एक बहुत ही लोकप्रिय एडियम के साथ। और आज का एडियम है आग में घी डालना। आग में घी डालना। नाउ व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? टू रिमेम्बर, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट शान और यू लाइक टू डीकोड द एडियम, आवर नंबर, आवर व्हाट्सएप नंबर इज 07161378030। और कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे।
2: Lotus FM.
0: And it is now time for us to learn some Hindi. As we always do, we share with you a very, very beautiful thought in the Hindi language. And thereafter, we give you the English equivalent and decode some interesting words. So today's lesson deals with the question of time. Okay, you do know time in Hindi is samay. So let's take a look at this lovely saying and what it means. So it reads like so. कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, यह वक्त है भाई बदलता जरूर है। सो इन इंग्लिश इट वुड रीड लाइक सो, नो मैटर हाउ टाइटली वन होल्ड्स ऑन टू इट, इट डेफिनेटली स्लिप्स। दिस इज टाइम माय ब्रदर, इट डेफिनेटली चेंजेस। ओके, so that's the English equivalent, and I think you agree with me. There is so much of truth and value in this wonderful thought that we're sharing with you today. So the first sentence says, "Kitna bhi pakad lo." Kitna bhi pakad lo. Pakad lo means to hold on to something, and kitna means no matter how tightly. Pakad lo, no matter how tightly one holds onto something. Fisalta zarur hai, fisalna ho ya fisalta simply means to slip. Fisalta zarur hai, zarur means definitely, or it's non-negotiable that this is going to happen, or it's definitely going to happen. To kitna bhi pakad lo, no matter how much or how tightly one holds onto it, fisalta zarur hai, it definitely slips. Yah vakt hai bhai. My brother, this is time. Time suggested in the word vakt. And as you do know, the Hindi word for vakt is samay. Vakt is more urdu. Yah vakt hai bhai, badalta zarur hai. Badalta means to change. Zarur is definite. So it definitely changes. And I think a wonderful lesson to all of us. Something may seem very, very normal, very, very usual. And the next moment could be absolutely a change in what seemed normal a few moments ago. So once again, the Hindi reads, Kitna bhi pakad lo, fisalta zarur hai. Yah vakt hai bhai, badalta zarur hai. And in English, we would say, no matter how tightly one holds onto it, it definitely slips. This is time, my brother. It definitely changes. A lesson for all of us therein. Thank you for tuning in. And I hope that you learned some good words in that. And I think you will agree with me. The thinking behind putting that together is really brilliant. A wonderful way to tell us, don't take anything for granted. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे उदित नारायण और अलका याग्निक जी की रूहानी आवाजों के साथ.

0: बिल्कुल दोस्तों, आज के खास कलाकार है शान मतलब कि शांतनु मुखर्जी. वी हैव वन लास्ट कमेंट हियर. दिस कम्स फ्रॉम मनोरमा रामगति एंड द मैसेज इज आई जस्ट लव शान. हिज वॉइस इज ऑसम, मेस्मराइजिंग एंड कैन हैव यू कैप्टिवेटेड. फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड सिंगिंग आई हैव बीन फॉलोइंग हिम. ही इज एन आउटस्टैंडिंग सिंगर एंड हैज वन many awards, and I think Manorama captures the sentiments of many, many of us. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे.
1: Lotus FM, Lotus FM, it's all you need, it's all you need.
0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा कि इस idiom का मतलब क्या है, और आज का idiom है आग में घी डालना. इसका मतलब क्या है हम आपको बताएंगे पहले किन किन ने इसको सही जवाब दिया. Okay, let's share with you how the good folk who got this correct. They are Vijay from KwaZulu-Natal, Preeta from Johannesburg, Ayla from Johannesburg, Professor Bhagwandin from KwaZulu-Natal, and Anil Ramsarup from Johannesburg. Well done to all of you. A well-deserved cheer is coming your way. Okay, so आग में घी डालना, what does it mean? As you do know all of the idioms and of course idiomatic expressions generally have a literal meaning and a figurative meaning. So the literal meaning is to add fuel to the fire. And if you look at the Hindi, it says आग में घी डालना. So आग means fire, आग में means in the fire, घी refers to ghee. I think we all know what ghee is, and of course dalna means to put, to place or add. Acha, to aag mein ghee dalna simply means to add fuel to the fire. That's the literal meaning, and the figurative meaning is simply to make a difficult situation worse. That is just one of the ways of saying it, right? So aag mein ghee dalna, how can one use it in a sentence? One could say usko bas aag mein ghee dalna ही आता है. उसको बस आग में घी डालना ही आता है, मीनिंग ही ओनली नोज हाउ टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स. दैट्स वन. अनदर वे ऑफ सेइंग दैट, आदत है उसकी आग में घी डालना. अच्छा, आदत है उसकी आग में घी डालना सिंपली मीन्स इट इज हिज हैबिट और हैबिट to put to add fuel to the fire or to create more problems. And you could also say, use it in this sentence, kathinaiyan badh rahi hain. Kathinaiyan badh rahi hain, aag mein ghee mat dalo. Kathinaiyan means problems or difficulties. Badh rahi hain means are increasing, since we are saying kathinaiyan meaning problems. Problems are increasing. Aag mein ghee mat dalo. Do not add fuel to the fire. So I hope you are not one of those people who makes difficult situations worse. I think most people are really, really good. And if you listen to Gitanjali, I would think gather together in a program like Gitanjali. Jiya dosa, aap Gitanjali sun rahe hain. Chaliye program ko aage badhate hain. This very khoobsurat rachna ke saath jo hai Anup Jalota ji ki rohani awaaz mein bol hai, aaj jaane ki zid na karo.

बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। खेत की बात है, मगर समापन की घड़ी करीब आ गए हैं और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है। ऑलवेज फन बीइंग इन योर कंपनी एंड सिंपली लव द एनर्जी दैट द म्यूजिक ब्रिंग्स टू द प्रोग्राम एंड सो मेनी ऑफ आवर लिसनर्स से सच वंडरफुल थिंग्स अबाउट द म्यूजिक कंपिलेशन एंड कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी वेरी वेरी मच फॉर दैट। अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे, मगर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 7 बजे के समाचार के बाद बारी आएगी टॉक एट 7 की। ऑलवेज वंडरफुल टॉपिक्स डिस्कस्ड ऑन टॉक एट 7 एंड दिस हैपेंस आफ्टर द 7 PM न्यूज। जैसे कि मैंने कहा, अगर भगवान की मर्जी हो अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि।